पर्छ महापति मरि गए मेरो विपद के कहु विवाह गरिदिए बुढा कुरुती कना मेरै वर्षमा

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

काशी दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार

पंछी पंख बिना हस्ति दंत बिना, पंछी पंख बिना हस्ति दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे वेश्य पुत्र पिता बिनहीन, जैसे वेश्य पुत्र पिता

बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना धरती मेघ बिना जैसे पंडित वेद बिहुना तैसे प्राणी हरि नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरी मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना।

0: देवरानी बोलावाने पनी देवर वलंता थमा जेठानी लीलाय बोलावाने पनी बालोला का थमा घास काटनी कटराय सीला के बाटराय सीला वारे घर मेरो जान गाँव शिलो के सराव मुर्था परवला भरे
1: अब तिगी
0: पान्ना परो तिमलाई दिमी दिमी घाम लागेर गाँव

अजन का मुलाडी के वंदा ठुला उखाले राबना ताई करकलो गावे ओई जानु गावा उखाले राबना ताई कपाल

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके

केवा नोहन चाय समझे यो मन रुन चा बनाऊ रे तई काटे हता को चूरा भाए जूरा मूरा जाऊला रे आसन लाऊला रे भाई नरी सवधान मैले मानी काना जाऊला रे आसन लाऊला रे भाई काठा को भरेंग इंचूला रे तरेंग माऊ मारे को बाचो रे भाई दंपरो हजार चारी कोटी को बदर माऊ मारे को बाचो रे सरीना कोट को तिमला रातो माटो थामाई रे खड़ को डोबाटो दांटे को होरा सोदा होरा पोरा थामाई रे खड़ को डोबाटो आइले को बर्सा ममारे को भाये को ताई रे इनित्यो यो बाटो करकाला को पानी डाल के पोखी जानी को चाई रे इनित्यो यो बाटो हताई रा मेरो यो पत्र काई गाला हर मीना बाजा दम देरो के गनु लारी बिर्साव कस गारी हर मीना बाजा दम देरो पटुकी फुको जीव मेरो सुका माया रे दालाई समझेरो भन न भन बाला मेरो

आर्मी नंबर चलाई हाथा को सारे लाई हाथा को सारे लाई तबे लाचिनी को ची

मेरे पिहरा ले न त समझे पानी न त समझे पानी मई समझौला दिन को दिन छत पानी तला जे जे परला परला जे जे परला परला मई समझौला दिन को दिन एक मुठी परल कत बड़ा

0: आजुरा को ब्याची सावनी आई रही चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी धानी आई उन संसार की नहीं रही ले यो जीवन ऐसा ही सुख का था ना यो घर को पी रही ले ओरी ओ उकाली जान को सावले दे दूँगा गलाऊं दा गल दाई ना गरा को मंचे ना बिजे सामन दाना ही फल दाई ना
1: यो कालो बन्नी वेला गाऊंगी
2: शुरू करनी वेला ची गाऊंगी शायद
1: शुरू में से बयाना को झूल के गाऊंगा सीता को तोपनी बात इमरो बैठी चावनी आई रे चुम्मा पनी
0: हरे आवानों का चौई पाता पाके को खुर्शानी बागमती दाई अथमाई समझाऊंगी बिरसानी ओरी ओ श्रीराम मायरों सुना को शैली छाती मायरों उठाक ज्ञानपा मायर तू हवल दरवाजे समल को साइनों पां ओरी ओ
1: पहला तो चोपड़ गाँव के आज अपनी गाँव की अब किन्होंने उल मुल्मा अल बीच किंचे

0: ओरी छेउ जो माने हो मेलो मेलो मेलो सुबह छिटो आइला छिटो आइला कृष्ण बाउसे और बाउसे सुजाता बिउले
1: बरैलाउने लाइते पलैलाउने दारिमा चाले पोने म आलु काटी

तला वैरो पीड़ा लुलाय गैरो बनी केरा लाय गवारा हमें दुई जान को मत भन है भन न।